0: मुजफ्फरवार सी मरहूम की आवाज़ में उन्हीं का नातिय कलाम आपने सुना। और अब हदिया अकीदत बहुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें इस्लामाबाद से मारूफ शायर जियाउद्दीन नईम साहब ने भेजा।
1: मोहब्बत ही मोहब्बत थी, हकीमाना रवैया था वो, जिसने एक आलम को नबी की समत खींचा था। नहीं थी उनके हाथ तफरीक अपने और पराये की, नहीं थी उनके हाथ तफरीक अपने और पराये की, सब इंसान उनके मदु थे, हर इंसान उनका अपना था। तहज्जुद में खड़े होते थे जब रब की इबादत को, तहज्जुद में खड़े होते थे जब रब की इबादत को, तो एक सैले रवा अश्कों का आंखों से बरसता था। तवालत से कयाम शब की पांव सूज जाते थे, तवालत से कयाम शब की पांव सूज जाते थे, बदन रब्बे दुआलम की खशियत से लरसता था। दुखी हद्दर्जा गुमराहों की गुमराही से होते थे, दुखी हद्दर्जा गुमराहों की गुमराही से होते थे, ख्याल उनको बहुत एक एक बशर की आकिबत का था। तो क्या कुफार के दुख में तुम अपनी जान घुला लोगे, तो क्या कुफार के दुख में तुम अपनी जान घुला लोगे, ये कहकर उनको रब ने इतना गम करने से रोका था। वो रोजो शब में 70 बार इस्तग़फार फरमाते, खुदा के नाम का हर लहजा विर्द उनका वजीफा था। दुआएं हमको मसनूना मयस्सर हैं हर एक पल की, दुआएं हमको मसनूना मयस्सर हैं हर एक पल की, उन्होंने अपने हर हर काम में रब को पुकारा था। मदद अजवाज की फरमाया करते घर के कामों में, मदद अजवाज की फरमाया करते घर के कामों में, हुकूक़े तबक़े निस्वा का एहसास उनको इतना था। कशिश ऐसी थी औसाफ़े हमीदा में नईम उनकी, कशिश ऐसी थी औसाफ़े हमीदा में नईम उनकी, उन्हीं का होके रह जाता था जो भी उनसे मिलता था। मोहब्बत ही मोहब्बत थी, हकीमाना रवैया था वो, जिसने एक आलम को नबी की समत खींचा था।
2: दी वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम मुख्तसरन WFA दरख्वास्त के लिए खुली है। दरख्वास्तें घरेलू बुनियाद पर दी जाती हैं और घर के अरकान का हांगकांग का रिहायशी होना जरूरी है। एक घराना बशमूल सिंगल्टन घराना, जो काम के औकात की और असासों और आमदनी की हदूद की जरूरियात को पूरा करता है, अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है। एक दरख्वास्त दहिंदा एक ही महीने के अंदर एक से ज्यादा बामुआवजा मुलाजमत के औकात कार बशमूल कुल वक्ती और जुज वक्ती मुलाजमतों के अदा शुदा औकात कार की इत्तला दे सकता है। स्कीम के तहत घर के तमाम मेंबरान के काम के औकात को इकट्ठा किया जाता है। नॉन सिंगल पेरेंट घराने जिनके महाना काम के मजमू औकात 144 घंटे से कम न हो, बुनियादी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर मजमू महाना काम के औकात 168 घंटे से कम नहीं है तो घर वाले दरमियानी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और अगर मजमू महाना काम के औकात 192 घंटे या उससे ज्यादा हैं तो घर वाले हायर अलाउंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। घरेलू आमदनी के मुताबिक अलाउंस पूरे रेट 3/4 की शरह या निस्फ शरह पर दिए जाते हैं। फुल रेट का बुनियादी अलाउंस $1,150 फी महीना है। फुल रेट मीडियम अलाउंस $1,380 फी महीना है। एक फुल रेट हायर अलाउंस $1,610 फी महीना है। घर के हर अहल बच्चे को चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है। मुकम्मल शरह है $1,610 फी महीना फी बच्चा। WFA घराने एक ही वक्त में कम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस की इमदाद हासिल नहीं कर सकते। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के क्लेम के महीनों पर लागू आमदनी और असासा जात की हद और अहलियत के मतलूबा मियार की तफसील WFA स्कीम की वेबसाइट पर दस्तियाब है, जिसका पता है wfa.gov.hk। मजीद मालूमात के लिए दरख्वास्त गुजार इस वेबसाइट को देख सकते हैं या हॉटलाइन को कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 2558-3000 2558-3000।
3: ऐसा कोई महबूब